TCL का विभिन्न होम अप्लायंसर को खरीद में कैशबैक तथा श्योर शॉर्ट गिफ्ट, वॉशिंग मशीन में 6 केजी एरियल मैजिक, एसी में फ्री इंस्टॉलेशन र नागरिकता मात्र भए पुग्छ। सहज ईएमआई मार्फत खरीद गर्न सकिन्छ। ग्लोबल नंबर 1 TCL इंस्पायर ग्रेटनेस।

0: नया वर्ष को अवसर में सेंसेई का होम अप्लायंसर को खरीद में आकर्षक उपहार तथा कैश बैक। फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में 6 केजी एरियल, सेमी ऑटोमेटिक में 1 केजी एरियल, एयर कंडीशनर में इंस्टॉलेशन साथ इंस्टेंट कैश बैक बनी र बम्पर में हीरो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल। नागरिकता मात्र भए पुग्छ, सहज ईएमआई मार्फत खरीद गर्न सकिन्छ।
1: यो नया वर्ष को अवसर में माइडिया का विभिन्न होम अप्लायंस को खरीद में आकर्षक उपहार तथा कैशबैक। साइड बाई साइड तथा मल्टी डोर रेफ्रिजरेटर में फ्री इंडक्शन, फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में फ्री 6 केजी एरियल, टॉप लोड में फ्री 2 केजी एरियल, सेमी ऑटोमेटिक में 1 केजी एरियल, डिश वॉशर में वॉशिंग टैबलेट र माइक्रोवेव ओवन में कुकिंग किट, हर एक खरीद में शोर शॉर्ट किट र बम्पर में माइडिया 519 लीटर रेफ्रिजरेटर जितने मौका। नागरिकता भए पुग्छ, सहज ईएमआई मार्फत खरीद गर्न सकिन्छ।

नया वर्ष को अवसर में गोदरेज का विभिन्न होम अप्लायंस को खरीद में आकर्षक ऑफर। फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में 6 केजी एरियल, टॉप लोड में 2 केजी एरियल, ट्विन टॉप में 1 केजी एरियल, माइक्रोवेव ओवन में कुकिंग किट र एयर कंडीशनर में फ्री इंस्टॉलेशन। नागरिकता भए पुग्छ, सजिलो ईएमआई मार्फत सजिलै खरीद गर्न सकिन्छ।

रामचंद्र जीव को आरती गावे, जोत रामचंद्र जीव को आरती गावे, बसत वैकुंठ मा परम सुख पावे। आउन बेला भो हरि, आउन बेला भो, भक्त जन को रक्षा।